0: खाती हला हे दिलियाली हम आला दिले मेने ई खाती हाले हम आला दिलियाले खाती आला हे के दिलियाली बाहती दाले वेले वासु ते बड़ा खड़ा रवा लिबा हे मेने ले थे बाहती दाले सोए नवतल दिन अशुद्ध बल यीशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे नमा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हमला के दियाले हमा
1: तेरे बे दे दे नवा खाती Hallelujah.
0: Itelia mala mati hana hele ketili ha mele matilia le. Obra sudiveva swami vas. Obat si udau karanne kine kenak

याज्ञाकरं सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

0: खाती हला हेतलियानी हम आला दिले वेने ई खाती हाले हम आला दिले आले खाती हला हे के त्रिया मेना बाहले हेतले सियलो असुते बाडा खडा वाली बा हे मेने ले थे मा खाती ला दिले सोए नवतल दिन असुते बल येशु स्वहांस के नाम में फले आऊ
1: बेखे मा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के दियाले हम आ तेरे
1: बे दे दे नो वाती दा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेली हा मेले माती लिया ले।

याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसु मैनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहां से उदिसाम अपटले बेवा आमेन।

याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमारिय तुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।